इंसान को जब थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाता है तो वो अभिमानी प्रभु परमात्मा के भी विपरीत बोलने लगता है और ऐसे घिनौने कार्य करता है जिन्हें देखकर देवता भी रो पड़ते हैं।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2। आज के कलाकार हैं पार्श्व गायक हेम लता जी। पेश करेंगे RJ किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे खास रेडियो प्रोग्राम सुनहरी पल में, जहां हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी गायिका से जिन्होंने अपने शुरू से हमारे दिलों को छू लिया है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गायिका के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज और गानों से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। आज हमारे सिंगर है हेमलता जी। हेमलता भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका है। 1970 के दशक के अंत से बॉलीवुड में एक प्रमुख पार्श्व गायिका रही है। वह शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित थी। उन्होंने खुद को फिल्म, संगीत गोष्ठी, टेलीविजन और संगीत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान की एक महान कलाकार बेबी लता से बनी हेमलता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उनकी मधुर मखमली आवाज से सभी पर जादू बिखेरने वाले पार्श्व गायिका हेमलता जी की। भारतीय सिनेमा में उनके अनूठे गीत उन्हें अन्य गायिकाओं से अलग पहचान दिलाते हैं। उनके गीत आज भी कानों में रस घोल देते हैं।

हेमलता जी का जन्म हुआ 16 अगस्त 1954 हैदराबाद में, लेकिन उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के चुरू जिले के सेहला गांव का निवासी है। उनका असली नाम लता भट्ट है, लेकिन फिल्म जगत ने उन्हें नाम दिया हेमलता। हेमलता जी को बचपन से ही गायकी पसंद थी, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि वह हेमलता को संगीत के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देना चाहते थे। उनका परिवार रूढ़वादी संस्कृति में डूबा हुआ था और पूरी तरह से हेमलता जी के संगीत सीखने के खिलाफ था। परिवार में संगीत का माहौल भरपूर था। पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन ये संगीत बेटियों के लिए नहीं था। शायद ये इनके संघर्ष का सबसे कठिन दौर था। इनका ये संघर्ष आगे भी रहा।

बचपन में हेमलता दुर्गा पूजा में होने वाले संगीत के कार्यक्रमों में छुप छुप कर गाया करती थी। वह परिवार का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, वह परिवार के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर खुद को गाने से रोक नहीं पाती थी। बचपन के इस छोटी उम्र में ही लता जी, किशोर कुमार, हेमंत दा आदि दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज पर गाने इन्होंने गाए। लोगों ने हेमलता को काफी पसंद किया। इन दिग्गज कलाकारों के साथ गाने के दौरान उनके आवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि लोगों ने इनका नामकरण कर दिया। फलस्वरूप हेमलता बेबी लता के नाम से मशहूर हो गई।

हेमलता जी की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना संगीतकार नौशाद साहब ने। नौशाद पहले संगीत निर्देशक थे जिन्होंने उनके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया कि हेमलता लगातार 5 साल तक मेरे लिए गाएगी, साथ ही साथ मैं हेमलता को संगीत का प्रशिक्षण भी दूंगा। ये बात फिल्म जगत में आग की तरह फैल गई और उनके घर पर बड़े बड़े संगीतकारों का तांता लगने लगा। सब बेबी लता को अपनी फिल्म में गवाना चाहते थे, मगर 5 साल का लंबा इंतजार और इधर फिल्मों में तुरंत गाने का ऑफर, आखिर नौशाद साहब के साथ किया गया उनका अनुबंध टूट गया और उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में इन्होंने अपना पहला गाना गाया। उस समय इनकी उम्र महज थी 13 साल। जिस दिन बेबी लता उषा खन्ना की फिल्म रूप रुपया में गाना गाया, उसी दिन इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए अपना दूसरा गाना ले चल मेरे जीवन साथी मुकेश जी के साथ गाया। उसके पहले SD बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी, चित्रगुप्त एक से बढ़कर एक गीतकार के साथ काम किया। बेबी लता हेमलता के नाम से इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने लगी।

इस बीच इनके प्रति राजनीति का सिलसिला भी शुरू हुआ। वह उस दौर के अपना सिक्का जमा रही थी जब संगीत जगत में बड़े बड़े नाम स्थापित हो चुके थे। इसके लिए उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भी हेमलता ने अपने अनूठी आवाज की गुणवत्ता पर खुद को स्थापित किया। राजश्री प्रोडक्शन के साथ उनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। उन्होंने 80 और 90 के दशक में राजश्री प्रोडक्शन की विभिन्न फिल्मों में कई गाने गाए। गाना कौन दिशा में लेकर चला गया, ये गाना उनके जीवन में एक और मील का पत्थर साबित हुआ।

इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता जी के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। रविंद्र जैन के सहयोग से उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर आधारित अधिकांश फिल्मों के लिए व्यापक रूप से गाया। रामायण चौपाइयां, कबीर दोहा, सुंदरकांड और विभिन्न भक्ति गीतों को उन्होंने गाया। इसके अलावा उन्होंने रामानंद सागर की टीवी सीरियल रामायण के लिए अपनी आवाज दी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, एक सीरियल में वो अभिनय भी करती नजर आई। वह एक एपिसोड में पारंपरिक मेरा भजन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो गीत नजर आए।

हेम लता जी ने कई भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। 38 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। करीब 3 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक नायाब नगमे दिए। पाकिस्तानी गायक अताउल्लाह खान के साथ उन्होंने 3 एल्बम के लिए गाने गाए, परंतु इनमें से 2 एल्बम ही रिलीज हुए। हेमलता जी 1999 में फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह गई। बॉलीवुड से विदाई लेकर वह मैक्सिको चली गई। वहां उन्होंने अपने म्यूजिक इंस्टीट्यूट के जरिए लोगों को संगीत सिखाने का काम करने लगी। 2015 में कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित उनका गाना माँ मुझे आने दे चर्चा में रहा। वह एकमात्र भारतीय फिल्म पार्श्व गायिका है जिसने अमेरिका जैसे देश में एक संगीत अकेडमी शुरू की। उनकी अकेडमी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के प्रचार और प्रसार के साथ साथ हॉलीवुड, लॉस एंजलिस से लेकर पूरी दुनिया में संगीत का प्रचार प्रसार कर रही है। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस संगीतमय यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमें अपना समय दिया और हेमलता जी के गीतों का रसवाद किया। हेमलता जी, आपके मधुर स्वर हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही हमें अपने गीतों से सुखद अनुभव देते रहेंगी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 2, प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। आज के कलाकार थे पार्श्व गायक हेमलता जी। रिकॉर्ड, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। गर्मी में मधुमक्खियों का बढ़ जाता है मोमी कीड़े का प्रकोप, रोकने के लिए विशेष जाली लगाएं। मधुमक्खी पालन वैज्ञानिक प्रबंधन से शहद का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान। मधुमक्खी पालन एक बेहद संवेदनशील और मुनाफे का व्यवसाय है, ऐसे में मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों के लिए मई और जून का महीना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। डॉक्टर कमल सैनी DHO ने बताया कि गर्मियों के इन कठिन दिनों में अतिरिक्त ध्यान और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर किसान न केवल अपनी मधुमक्खियों को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि उत्तम गुणवत्ता वाले शहद का बम्पर उत्पादन लेकर अपनी आय को भी दुगना कर सकते हैं। गर्मियों में यदि मधुमक्खियों के पक्षों का सही प्रबंधन ना किया जाए तो ना केवल मक्खियों के भागने या मरने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि शहद के उत्पादन में भी भारी गिरावट आ जाती है। गर्मी में मोमी कीड़ा, वैक्स मॉथ और पीली ततैया का हमला बढ़ जाता है। बक्सों की नियमित सफाई करें और प्रवेश द्वार पर ततैया को रोकने के लिए जाली का उपयोग करें। पक्षों का तापमान नियंत्रित रखने के लिए छायादार स्थानों का चयन करें। मधुमक्खियों के बक्सों को कभी भी सीधे धूप में ना रखें। इन्हें पेड़ों की घनी छाया के नीचे स्थापित करें। यदि छायादार पेड़ ना हो तो बक्सों के ऊपर पुआल, पराली या हरी नेट, ग्रीन शेड नेट डालकर कृत्रिम छाया का प्रबंधन अवश्य करें। गर्मी में बक्सों के ऊपर जूट की बोरियां टाट डाल दें और उन पर दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव करें। इससे बक्से के भीतर का तापमान नियंत्रित रहेगा और मक्खियां शांत रहेंगी। गर्मियों में मक्खियों के छत्ते को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यदि पानी दूर होगा तो मक्खियों की ऊर्जा सिर्फ पानी लाने में ही नष्ट हो जाएगी। बक्सों के बिल्कुल नजदीक लगभग 10 से 20 मीटर के दायरे में साफ और ठंडे पानी के बर्तनों की व्यवस्था करें। पानी के बर्तनों में सूखी लकड़ी के टुकड़े, जूट की रस्सी या कंकड़ पत्थर डाल दें ताकि पानी पीते समय मधुमक्खियां डूबकर ना मरें। चाशनी बनाकर बॉक्स के अंदर रखें। इन दिनों में प्राकृतिक रूप से फूलों की कमी हो जाती है, जिससे मक्खियों को पर्याप्त मकरंद, नेक्टर और पराग पॉलन नहीं मिल पाता। इस कमी को पूरा करने के लिए चीनी व पानी को 1:1 में घोल चाशनी बनाकर पक्षों के भीतर फीडर में रखें। ध्यान रहे घोल शाम के समय ही रखें ताकि अन्य बाहरी मक्खियां या चींटियां आकर्षित ना हो। सूरजमुखी व औषधीय पौधों के पास रखें बॉक्स। फ्लोरा फूलों वाले क्षेत्र की मैपिंग शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए बक्सों को ऐसी जगहों के पास रखें जहां सूरजमुखी, मक्का, हरा चारा या औषधीय पौधे हों। रानी मक्खी की देखभाल। बक्से में रानी मक्खी का सक्रिय होना सबसे जरूरी है। यदि रानी मक्खी बूढ़ी हो चुकी है तो उसे नई और ऊर्जावान रानी मक्खी से बदलें ताकि अंडों का उत्पादन सही रहे और कॉलोनी में कामगार मक्खियों की संख्या कम न हो। वीडियो देखकर जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। गोबर और गौमूत्र से तैयार की खाद, 10 एकड़ में सालाना कमा रहे 10 लाख रुपए। किसान संदीप ने प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया के खुद के बीज तैयार किए। हिसार के गांव चूली देशावली के किसान संदीप कुमार करीब 20 साल से परंपरागत खेती कर रहे थे। गांव में गेहूं, कपास, ग्वार, सरसों आदि का फसल चक्र ज्यादा चलता है। इनमें खाद व फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के कारण खेती में ज्यादा बचत नहीं निकल रही थी। करीब 8 साल पहले संदीप ने YouTube पर रोहतक के प्रगतिशील किसान राम सिंह का वीडियो देखा, जिसमें वे ऑर्गेनिक तरीके से खेती के टिप्स बता रहे थे। यहीं से संदीप ने भी ऑर्गेनिक खेती करने की ठानी। 10 एकड़ के फॉर्म में शुरुआत में आधा एकड़ जमीन पर सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती शुरू की। राम सिंह से मोबाइल पर बात करके टिप्स लेते और सब्जियों में उसी तरीके से खाद देते। इसके बाद कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत के गुरुकुल से ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ली। अब संदीप
अपने 10 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। करीब 10 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो रही है। संदीप बताते हैं कि गोबर और गौमूत्र की खाद तैयार करके सिर्फ इसी खाद का प्रयोग वे खेत में कर रहे हैं। यह खाद भी सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर सब्जियों की फसल को देते हैं और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करते हैं। मंडी में भी अब उनके खेत की ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर किसानों को कर रहे जागरूक। संदीप ने बताया कि वे किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जागरूक कर रहे हैं, साथ उनको फेसबुक के जरिए टिप्स देते हैं। किसान उनके खेत में आकर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। वे किसानों को सब्जियों के कल्चर भी मुफ्त देते हैं, जिसमें कंपोस्टिंग, फंगस व जीवाणु होते हैं। संदीप बताते हैं कि उसने अब तक प्याज, धनिया, गोभी, तोरी और घिया जैसी फसलों के खुद के बीज तैयार किए हैं। इनके जरिए ही वे अपने खेतों में खेती कर रहे हैं। प्याज के 2 वैरायटी तैयार की है। इसमें एक फगवा रंग का प्याज है, इस वैरायटी का नाम M1 रखा है। दूसरी वैरायटी का प्याज पूरी तरह से सफेद रंग का देसी प्याज है। इसी तरह अन्य सब्जियों के बीज खुद के खेत में ही तैयार करते हैं। बीज व खाद का खर्च ना होने पर खेती का खर्च भी कम हुआ है। गन्ने की फसल में हो सकता है काली कीड़ी और पोका बॉइंग का आक्रमण। फसल पड़ जाती है पीली, ऐसा होने पर बचाव के करें उपाय। गन्ने की फसल में काली कीड़ी और पोका बॉइंग रोग का आक्रमण हो सकता है। इन कीट का नियंत्रण जरूरी है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर PR काम्बोज ने बताया कि 400 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी को 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। छिड़काव घोप पर करें ताकि दिन के समय ब्लैक बग बच्चे या प्रॉड नष्ट हो जाएं। कभी कभी अष्टपदी माइट का आक्रमण होने से पत्तों पर लाल रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके लिए 600 मिलीलीटर रोगो 30 ईसी को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। गन्ने की फसल में गर्मियों में 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण को एंट्रोजेन 50 घुलनशील पदार्थ 1.6 kg प्रति एकड़ का छिड़काव 250 से 300 लीटर पानी में घोलकर करें। चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के लिए 2-4 dl सोडियम सॉल्ट 1.0 किलो प्रति ग्राम प्रति एकड़ की दर से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पहला छिड़काव बिजाई के 3 सप्ताह बाद करें। गन्ने की बीजू या नौलफ फसल में इस माह के अंत तक नाइट्रोजन वाली खाद की दूसरी मात्रा 45 केजी यूरिया प्रति एकड़ खेत से घास फूस निकालकर छिट्टे द्वारा डालें और ऊपर से हल्की सिंचाई करें। मोड़ी फसल में उपयुक्त खादों की 1.5 गुनी मात्रा का प्रयोग करें। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें, आबाद रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: इतना क्यों सोचता मैं।
1: आप कभी किसी बात पर इतना सोचते हैं कि दिमाग फटने लगे, अगर मैं ये बोलूं उसने ऐसा क्यों कहा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता बल्कि हर दूसरे इंसान के साथ होता है। आज हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग से कैसे बचा जाए। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं रेडियो पॉडकास्ट विद किरणी। ओवरथिंकिंग, सोचने की हद। ओवरथिंकिंग क्या है? जब हम किसी बात या स्थिति पर आवश्यकता से अधिक सोचते हैं और ये सोचना हमारे डिसीजन मेकिंग या डेली लाइफ को प्रभावित करता है तो इसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग के क्या क्या कारण है? भविष्य की चिंता, आने वाले समय को लेकर चिंतित रहना, अतीत का पछतावा, बीते हुए समय की गलतियों पर बार बार सोचना, हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाना। ओवरथिंकिंग के साइंस, हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाना, नेगेटिव सिनेरियो बनाना, रात को नींद ना आना या अननेसेसरी स्ट्रेस लेना। ओवरथिंकिंग क्यों होता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस, बुरे तजुर्बे या गलतियों पर अटक जाना। परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट होने की चिंता। फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे ये सोचना। ओवरथिंकिंग से कैसे बचे? 5 सेकंड रूल, किसी डिसीजन पर ओवरथिंक हो रहा है तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। जर्नलिंग, अपनी सोच लिखने की आदत डालिए। माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग करें। पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, म्यूजिक, एक्सरसाइज या कोई हॉबी में बिजी रहें। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। रोजाना ध्यान लगने से मन शांत होता है। ओवरथिंकिंग के नुकसान, इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद की समस्या हो सकती है। कंक्लूजन, सोचना जरूरी है लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं। अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखिए वरना सोच आपको कंट्रोल कर लेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। पॉडकास्ट विद किरणी के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

चलते चलते तुम्हारी दुआओं का असर देखेंगे और सरी रहा अपने इंतजार को महफूज रखेंगे अपने महबूब के लिए, उस महबूब के लिए जो हरदम मेरे साथ मेरे पास रहता है मेरे साए की तरह। तुम्हारे कुछ ख्वाबों ने एक मुद्दत के बाद दिल में क्यों आज आस जगाई है कि तुम्हारी सांसें तुम्हारी धड़कनें मेरे आने वाले कल का नसीब हैं। हमारे हाथ भी उठते हैं अब तुम्हारी दुआओं में, जब मेरे कारवां में तुम्हारा साया मेरे साए के हमराह इस रेतीले सफर में मील के पत्थर की तरह रह गुजर में शामिल तो होता है पर रूबरू नहीं होता।

उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में सिर्फ तुम्हारी यादें साए की तरह मेरे साथ साथ हैं, मेरे पास पास हैं। परछाइयों के इस सफर में हमारे रास्ते पथरीले हैं, पर तुम्हारे हैं उम्मीदों से भरे। तुम्हारे लिए फिर सुबह होगी और हमारे नसीब में है हिजर की ढलती शामी। इन रेतीली हवाओं का रुख क्यों नहीं कोई मोड़ लेता है, क्यों नहीं कोई मुझे अपने दामन में पनाह देता है। मेरी चाहतों को हमेशा ये कौन दर्द का लिबास पहनाता है, क्यों कोई मुझे राहे रुस्वा छोड़कर यूं ही चला जाता है ये कहकर कि मैं लौट कर तुम्हारे ही पास आऊंगी जीने के लिए। ये मेरा ही कसूर था जो उदासी भरे इन पीले पत्तों के मौसम में मैंने तुम्हें चाहा है अपनी चाहतों की तरह। तुम्हारे आसमां में अपनी परवाज लिए बुलंदियों को छूने की आरजू की, तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना मुकद्दर तलाशना चाहा, ये सोचकर कि मेरे आंसुओं से शायद कभी भीगेगा तेरा प्यार।

कुछ तो है जो बेवजह तुम मेरी जिंदगी में आकर मेरे मासूम ख्यालों को तन्हा कर जाते हो, और मैं तुम्हें सोचता रहता हूं देर तक कि तुम मुझे अपने आंचल में जो छिपाते, तो शायद मैं खुदा से जीने की आरजू करता, गुजारिश करता, मेरे एहसास को तुम संभालते, मेरी धड़कनों में मेरे साथ शामिल हो जाते, मेरे अधूरे सफर में मेरे हम सफर बन जाते, मेरी वीरानियों को तुम आबाद करते, मेरी राहों को तुम मुनव्वर करते, अपने सितम अपनी परेशानी मुझे दे देते, मगर ये हो न सका क्योंकि तुम्हें जाना था दूर किसी और की दुनिया में, जहां शायद उजाले तुम्हारी राहों को रोशन करने के लिए मुंतजर हैं, जहां पिंजरों में कैद परिंदे तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं अपनी आजादी के लिए, जहां ये बेजुबान पत्थर कुछ बोलने की फिराक में है, जहां ये अपनी खामोशी तोड़ने के लिए तरस रहे हैं, बेचैन हैं, मगर अब मुझे खुद को संभालने के लिए किसके हाथ उठेंगे मेरी दुआओं के लिए।

दोस्तों, फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। ये सफर जारी है। जब रिश्ते टूट गए तो फिर कल्पना क्यों करे, क्यों तुम्हारे बारे में सोचे। क्यों तुम्हारे दिए हुए तोहफे संभाल कर रखें, फिर क्यों ना हम तुम्हारे लिखे हुए खत जलाएं, तुम्हारी दी हुई निशानियां इन पानियों में बहा दें, तुम्हारे घर तक जा रहे इन रास्तों को भूल जाने की कोशिश करें। जब ये रिश्ते टूट गए तो फिर हम क्यों उजालों का इंतजार करें। क्यों न गुप अंधेरों में गुम हो जाए, तन्हा चले चले बचपन के आगोश में, मिट्टी के खिलौनों से टूटी दीवारों को सजाएं, रंग बदलती दुनिया की तस्वीरों को आखिरी बार। आखिरी बार अपने कैनवास पर उतारने की कोशिश करें। शायद इस बार मैं एक पायदार तस्वीर बनाने में सफल हो जाऊं।

यही वो जगह है जहां हम मिले थे कभी। सब कुछ अपनी जगह बरकरार है, कायम है। हाँ, ये चिनार तब बहुत छोटा था, पर अब इसकी शाखाएं आसमां से बातें करने लगी हैं। इसकी नर्म नाजुक परछाई में बिछे मखमली घास पर करवटें लेने को दिल कर रहा है, क्योंकि ये जगह आज भी वैसी ही है जैसे पहले कभी हुआ करती थी, जहां सुनहरी शामों से पहले आफताब का मंजर हमारी सांसों को ताजगी बख्शता रहा। ये हवाएं हमारी रूहों को अमन सुकून से नवाजती रहीं। ये पानी अमृत से कम नहीं। यहां इन परिंदों की मीठी मीठी बोली सरगम की तान छेड़ती थी, और हर कोई अपनी आवाज इनकी बोली से मिलाया करता था, ताकि यहां का माहौल संगीतमय हो। बदला अगर है कुछ तो वो है सिर्फ हमारा अतीत, हमारा बचपन, जो शायद कभी भी लौट कर नहीं आ सकता।

के लिए बस इतना ही। ये सफर आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाहेंगे आपसे इजाजत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता RJ किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों के महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से, प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक आपका स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम फिल्मी किस्से में। इस कार्यक्रम में हम हर मर्तबा बात करेंगे किसी भी एक गोल्डन ईरा मूवी के बारे में और जानेंगे उनके अनकहे किस्से और सुनेंगे उस फिल्म के गीत। आज हम बात करेंगे 1970 की सुपर डुपर हिट फिल्म के बारे में, जिसने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए हैं। वह फिल्म है आन मिलो सजना, जिसमें लीड रोल में सुपरस्टार राजेश खन्ना और आशा पारेख। इस फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त। फिल्म के गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने और कंपोज किए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनाता हूँ इस फिल्म का एक गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, कोई नजराना लेकर आया है।

0: गीत तो था बहुत मधुर। अब गीत से मुझे इसी फिल्म के एक और गाने का किस्सा याद आया। इस फिल्म में एक गाना है अच्छा तो हम चलते हैं। इस गाने के आखिरी चंद सूर्यास्त के समय शूट किया जाना था, इसलिए सभी जल्दी में थे और हड़बड़ी में काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख दोनों एक दूसरे की पंक्तियां गाने लगे और बाद में इस किस्से को याद कर खूब हंसे। तो अब गाने को याद कर ही लिया है, इसे सुन भी लेते हैं किशोर कुमार की सुरीली आवाज में।
1: अच्छा तो हम चलते हैं,
2: फिर कब मिलोगे?
1: जब तुम कहोगे
2: जुमेरात को।
1: हाँ हाँ आधी रात को।
2: कहाँ?

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: अरे नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपको एक और किस्सा जरूर सुनाने जा रहे हैं। इस फिल्म के एक और गीत की शूटिंग धान के खेतों में होनी थी, जिसमें बहुत कांटे थे, जिस वजह से आशा जी को बहुत दर्द सहना पड़ा, जिसने उनके लिए इस गाने को और कठिन बना दिया था। और वहां केवल एक ही वॉशरूम था, इसलिए वह शूटिंग के बाद ही होटल वापस जा सकते थे। इतनी कठिनाई के बाद भी आशा जी ने मुस्कान के साथ इस गाने को शूट किया और हमें मुस्कान के पीछे के दर्द को महसूस ना होने दिया। अब इस गीत के बारे में इतनी बात हो ही गई है तो आपको सुना भी देता हूँ, जो है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी की आवाज में, रंग रंग के फूल खिले।

किस्सों का सफर जारी है और गीतों का भी। कहा जाता है इस फिल्म के दौरान आशा पारेख जी को चोट लग गई थी, लेकिन आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि चोट उन्हें इस फिल्म के सेट पर नहीं बल्कि किसी और फिल्म के सेट पर लगी थी, और जब वह वहां से शूट कर इस सेट पर पहुंची तो चोट की वजह से उनसे जूता नहीं पहना गया, जिसके बाद ओम प्रकाश ने उनके एक्सरे जांच की व्यवस्था की और फिल्म के एक दृश्य में काका ने उन्हें उठाया। आप देखेंगे कि वह नंगे पैर और उनका पैर सूजा हुआ है। थी ना यह रोचक जानकारी। अभी और किस्से और गीत बाकी हैं, उसके लिए बने रहे हमारे साथ और सुने लता जी की आवाज में यह गीत तेरे कारण मेरे साजन।

आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म का गीत। हम सब जानते हैं राजेश खन्ना जी को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है और वह कितने लोकप्रिय थे। इस फिल्म के एक गाने को छोड़ बाकी सभी गानों की शूटिंग कश्मीर में हुई और उस समय राजेश खन्ना जी को देखने के लिए उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती थी और खासकर लड़कियों की, जिस वजह से कभी कभी शूटिंग में देरी हो जाती थी या शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती थी। अब कश्मीर में शूट हुआ एक गीत भी आपको सुना देते हैं किशोर की आवाज में, जवानी ओ दीवानी।

आप सुन रहे थे 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। आज हमने बात की है आन मिलो सजना फिल्म के किस्सों के बारे में और अब चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी चरण की ओर और आपको सुनाता हूँ एक आखिरी किस्सा। आन मिलो सजना में 6 सुपरहिट गाने थे जिनमें से ज्यादातर किशोर जी, लता जी और रफी साहब ने गाए, लेकिन इसमें आशा जी के खाते में भी एक गाना आया। यही नहीं, लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी, ओम प्रकाश जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ यह पहली फिल्म थी। आम तौर पर ओम प्रकाश जी ने शंकर जय किशन जी के साथ काम किया है, इसी वजह से शंकर जय किशन जैसा अच्छा बनने की जिम्मेदारी पूरी तरह उन पर थी। और लक्ष्मीकांत जी और प्यारे लाल जी कहते हैं यह उनके लिए बहुत सम्मान की बात थी। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा और आपको छोड़े चले जाऊंगा आशा भोंसले जी के गाए हुए इसी फिल्म के नटखट गीत के साथ, पलट मेरी जान। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से, लिखा आरजे सेजल ने, प्रस्तुतकर्ता व रिकॉर्डिस्ट दीपक कुमार, निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दे। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
3: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: जी
1: लंबू जी
0: टिंकू
2: लंबू
0: टिंकू लंबू
3: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

0: मोहब्बत के तराने गुनगुनाने आ गए हैं, हम अपनी सादगी से आपको रिझाने आ गए हैं। यहाँ सिर्फ सुर ताल और गाने ही नहीं बजते, हम तो दिलों के तारों को दिलों से मिलाने आ गए हैं। नमस्कार, प्रणाम और शुभ दिन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा और बेहद अजीज कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कारवां में। कहते हैं कि शब्द जहां खामोश हो जाते हैं, वहां संगीत सरहदें लांघकर रूह को छू लेता है। आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसी हसीन महफिल जहां सिर्फ सुर और साज नहीं सजेंगे, बल्कि आपकी धड़कनें और आपकी भावनाएं बयां होंगी। यहां सिर्फ गाने नहीं बजाए जाते, बल्कि आपकी अनकही बातों को, आपकी यादों को और आपके अपनों को दिलों से दिलों को जोड़ा जाता है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी।
1: आज की इस सुरीली शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बेहद खास और दिलकश तिकड़ी,
2: जिनकी आवाज में कश्मीर की वादियों जैसी ठंडक और मखमली एहसास है। भारत जी जब माइक संभालते हैं तो शब्दों को एक नया मुकाम मिल जाता है। उनकी संजीदगी आज की महफिल में चार चांद लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है।
1: सुरों की मल्लिका और बातों में मिश्री सी मिठास घोलने वाली हमारी प्यारी कृष्णा, जिनकी मुस्कुराहट और बातों का अंदाज सीधे दिल में उतर जाता है। आज वो आपकी हर फरमाइश को अपनी खूबसूरत आवाज के जरिए एक नया रूप देंगी।
2: मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और इस महफिल में आज एक नया ताजा और युवा झोंका जुड़ा है, हमारी नई इंटर्न नैना। नैना के पास आज की जनरेशन का नजरिया भी है और संगीत के प्रति एक गहरी उत्सुकता भी। उनकी चमचमाती ऊर्जा आज के शो को एक नया जोश देने वाली है।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो फिर देर किस बात की, दिल की खिड़कियां खोल दीजिए, अपनी यादों को आजाद कर दीजिए और अपनी भेजी हुई फरमाइशों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए। सिलसिला चाहतों का यूं ही चलता रहेगा, गीतों का ये मौसम हर पल बदलता रहेगा। जुड़ जाइए हमारे साथ इस रूहानी सफर में, क्योंकि दिलों से दिलों का राबता यही बनता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लाजवाब सफर आपके नाम और आपकी पहली फरमाइश के साथ।
2: लेती हूँ पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मंचली का गीत। गीत के बोल हैं गम का फसाना बन गया अच्छा। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार और लीना चंद्रवाकर ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये पहला मधुर गीत।
3: गम का फसाना बन गया अच्छा।
4: अच्छा जी।
3: एक बहाना बन गया अच्छा।
4: अच्छा।

तो श्रोताओं, आपकी नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नल्लेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, भेजे वाले श्रोता है पीएस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म गोपी से गीत। गीत के बोल है अकेले ही अकेले चला है कहां। इस गीत को शुरू से संवारा है स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। पीएस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा।

लेकर आई हूँ अगली फरमाइश, जो आई है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब सिंह राहुल। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म कर्तव्य से गीत। गीत के बोल हैं, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। इस गीत को आवाज दी है गायिका लता मंगेशकर जी ने। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है दयालबाग अम्बाला कैंट से, और भेजने वाले श्रोता हैं हनी और अनिल। ये दोनों सुनना चाहते हैं फिल्म चाचा भतीजा का गीत। गीत के बोल है तेरे शीशे का सामान। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत है इन दोनों का ये पसंदीदा नगमा।

हूँ अगली फरमाइश जो आई है अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं कैप्टन अमरजीत शर्मा, जो सुनना चाहते हैं फिल्म दुल्लारी से गीत। गीत के बोल हैं ऐ दिल तुझे कसम है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए सुनते हैं कैप्टन अमरजीत शर्मा का यह पसंदीदा गीत।

0: विक्रम है।
1: देश है अगली फरमाइश जो आई है धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोतागण है निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म रात के अंधेरे में का गीत। गीत के बोल हैं, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते। इस गीत को अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने और मुकेश ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये खूबसूरत सा गीत।

जी हाँ, आप सभी के लिए एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुमार हेडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। भेजे वाले श्रोता है सईद मसरूर। इनके साथ अन्य श्रोता हैं शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और आदिब। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म असली नकली से गीत। गीत के बोल है एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।

प्रस्तुत है अगली फरमाइश जो आई है समस्तीपुर बिहार से। भेजने वाले श्रोता हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह और रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह। यह सभी सुनना चाहते हैं फिल्म जीवन मृत्यु से गीत। गीत के बोल है झिलमिल सितारों का आंगन होगा। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और लता मंगेशकर जी ने। आइए प्रस्तुत करते हैं इन सभी का पसंदीदा गीत।

आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो हमारे पास आई है चंदरपुरी अंबाला छावनी से। भेजने वाले श्रोता हैं मदन गोपाल सैनी जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म पुष्पांजलि का गीत। गीत के बोल हैं, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। इसे अपनी आवाज से सवारा है मुकेश जी ने। तो पेश है इनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आप किसी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, पंजाबी या हरियाणवी गीत सुनना चाहते हैं, आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर लिखिए। आपको लिखना होगा फिल्म का नाम या गीत के बोल और भेजना होगा हमारे नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। हमें आपकी फरमाइशों का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही लेता हूं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से। भेजने वाले श्रोता है लक्ष्मण राव लोखंडे। ये सुनना चाहते हैं फिल्म आया सावन जूम के से गीत। गीत के बोल है बदरा छाई के झूले पड़े। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और पूरा लोखंडे परिवार। आइए, प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा नगमा।
1: बदरा

प्रस्तुत करते हैं अगली फरमाइश जो आई है डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं सीताराम, ये सुनना चाहते हैं फिल्म सरगम से गीत। गीत के बोल हैं हम तो चले परदेश। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने। आइए सुनते हैं इनका फरमाइशी गीत।

0: प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की आधी फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव झुगोड़ी जिला यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोतागण हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम और वीरेन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म सौतन से गीत, गीत के बोल हैं शायद मेरी शादी का ख्याल, जिसको अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार ने। तो पेश है इन सभी की फरमाइश का ये मधुर सा गीत, और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।
1: मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी ये पहली प्रस्तुति पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
2: जी हां श्रोताओ, आप हमें भी दीजिए इजाजत और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये फरमाइशी गीतों का सफर पसंद आया होगा। जैसे हमने पहले कहा था कि हम दिलों को दिलों से जोड़ते हैं और आपकी भावनाओं को सभी तक पहुंचाते हैं। उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हुए होंगे। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विद्यास्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। भिंडी की फसल पर बढ़ सकता है सफेद फफूंद का खतरा, संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। गर्मी के बीच बार बार मौसम के बदलाव से भिंडी की फसल में सफेद फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का खतरा है। करनाल क्षेत्र में कुछ जगह बागवानी विभाग टीम को यह लक्षण भी मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। प्रदेश में करीब 12,480 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की खेती की जाती है। पिछले वर्ष लगभग 1,34,143 टन उत्पादन दर्ज किया गया था। अंबाला, नूह, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और भिवानी भिंडी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि सफेद फफूंद रोग की शुरुआत पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बों से होती है। धीरे धीरे यह पत्ती को ढक लेता है जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर का छिड़काव प्रभावी उपाय। किसानों को सलाह दी गई है कि रोग की रोकथाम के लिए किसान सल्फर 80% WDG का 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना भी लाभकारी रहता है। भिंडी का गर्मियों में उत्पादन बढ़ने पर मंडियों में सामान्यतः 15 से 30 रुपए प्रति किलो भाव रहता है, जबकि बरसात या ऑफ सीजन में यही भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। गुणवत्ता वाली कोमल भिंडी को अधिक कीमत मिलती है। 40 से 60 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई। 40 से 60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार बुवाई के बाद लगातार कई सप्ताह तक उत्पादन मिलता है। स्थानीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। गेहूं धान चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक फसल मानी जाती है। मूंगफली की बिजाई का सही समय। मूंगफली की बिजाई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर लें। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए प्रति एकड़ बुवाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट ड्रिल करें। जिप्सम का प्रयोग भी लाभकारी है। दीमक और सफेद लट से बचाव के लिए बीज उपचार अवश्य करें। जरूरत से ज्यादा कीटनाशक व खाद डालने से मर जाते हैं मिट्टी के मित्र। फसलों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएगा उत्पादन। आधुनिक कृषि में जब भी फसल उत्पादन बढ़ाने की बात होती है तो अमूमन हमारा ध्यान नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश युक्त NPK रसायनों पर जाता है। मिट्टी का अपना माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीव संसार हो रहा है। ऐसे में यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया तो करोड़ों रुपए की खाद भी फसलों को जीवन नहीं दे पाएगी। उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण करनाल के अनुसार रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का जैविक ताना बाना पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया या कीटनाशक डालते हैं तो मिट्टी के मित्र बैक्टीरिया और कवक मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप
मिट्टी ऊपरी तौर पर तो मौजूद रहती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फसलों पर कीटों का हमला बढ़ जाता है। किसान पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सॉइल बायोलॉजी को समझे और जरूरी वैज्ञानिक तरीके अपनाए। मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना जरूरी। क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक आधार। मिट्टी में कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75% होना जरूरी है। इसके लिए ढेंचा, मूंग जैसी हरी खाद, किंचवा खाद और फसल अवशेषों को खेत में ही गलाएं। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ें राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का रुख। PSB और एजोट्रोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। पौधों को मिलेगा सुलभ भोजन। स्वस्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन में बदलते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होता है। बेलों के नीचे घास फूस या फसल अवशेष बिछाएं, होगा गर्मी से बचाव। 30% तक नुकसान घटाने में रहेगी मददगार। बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी, तरबूज, खरबूज, खीरा, तोरई, करेला और कद्दू जैसी फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगती है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में अंतराल पर सिंचाई इंटरवल इरिगेशन तकनीक फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक में मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल्चिंग भी उतनी ही लाभकारी है। बेलों के नीचे घास फूस या फसली अवशेष बिछाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम खैरवा ने किसानों को सुबह या शाम सिंचाई करने की सलाह दी है। यह है इंटरवल इरिगेशन। इस तकनीक को रुक रुक कर सिंचाई करना भी कहा जाता है, जहां खेतों को लगातार पानी देने के बजाय निश्चित समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

खातर अरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। समय समय पर हम आपको अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के माध्यम से। अब

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: क्या हुआ? परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब। अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, और आप सुन रहे हैं हमारे प्रसारण अंबाला छावनी से। और ये सामुदायिक रेडियो अंबाला छावनी से प्रसारण करता है और इसकी स्वीकृति मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। हम बात करते हैं अंबाला की और अंबाला को विश्व पटल पर रखने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी श्रोताओं से हम क्षमा याचना करना चाहते हैं, क्योंकि कल हमारे इलाके में, कल हमारे एरिया में, दयालबाग एरिया में कल बिजली का जो कट है वो तकरीबन 11 घंटे का था। तो कल हम सारे जो कार्यक्रम है वो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए। कारण उसका ये है कि जो हमारा बैकअप है, एक समय के बाद वो बैकअप भी समाप्त हो जाता है। और कल शुक्रवार को आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो शुक्रवार को ही प्रसारित होता है, और उसके बाद इसका पुनः प्रसारण बुधवार को प्रसारित होता है, यानी अगले बुधवार को। तो कल का कार्यक्रम हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि तब तक हमारा जो बैकअप है वो समाप्त हो चुका था। तो इसलिए आज हमने आप सभी को सूचित करते हुए ये कहा कि कल वाला जो फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है वो हम शुक्रवार को विशेष तौर पर चलाएंगे, जो हमने आज 2 बजे चलाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। साथ में एक बात हम जरूर ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी कोई विभाग लोगों के लिए कार्य करता है, उसके लिए अगर कोई बदलाव करना है, अगर कोई ठीक करना है कोई कार्य, वो बहुत जरूरी है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 12 घंटे के लिए बिजली को बंद करें। उसमें बहुत सारे लोगों को समस्याएं आती है, खास करके बुजुर्गों को, इस खतरनाक गर्मी में, इस ऐसी गर्मी में जहां पर बिना फैन के आप नहीं रह सकते। हम एसी की बात नहीं करते हैं, कम से कम एक फैन चलना चाहिए एक व्यक्ति के लिए, खास करके जो बुजुर्ग हो और जो लोग बीमार हो, जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको भी कल हमारे एरिया में 12 घंटे तक बिना बिजली के रहना पड़ा, क्योंकि इन्वर्टर की भी एक लाइफ होती है। 3-4 घंटे में सभी के इन्वर्टर खत्म हो गए। एक स्टेज ऐसा आया कि जब इन्वर्टर्स भी खत्म हो गए, बैकअप भी खत्म हो गए, और फैंस ने भी चलना बंद कर दिया। साथ में एक सबसे बड़ी समस्या ये कि आज के दौर में जब हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ा है और तरक्की हुई है, हमारे यहाँ पे 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, और जब 12 घंटे के लिए बिजली जाए, जब रात होगी, तो बहुत सारे घर में मोमबत्ती नहीं थी, लालटेन नहीं था, क्योंकि अब इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका समाधान एक ही है, ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में दिक्कत होगी, परेशानी होगी। पर जो विभाग है उनको भी पूर्व सूचित करना चाहिए लोगों को, अभिभावकों को, और उन लोगों को जिन पर कोई उसका असर पड़ने वाला होता है, ताकि उसकी तैयारी पहले की जाए। अगर हमें पता है कि 10 घंटे के लिए बिजली का कट है, तो हम बिजली को, बैकअप को सही दिशा में इस्तेमाल करें, ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर सकें। ये एक अनसुयोजित तरीका है कि अगर आप 12 घंटे के लिए कि अगर आप बिजली को बंद करते हैं इस पीक गर्मी में, जहां पर बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा नहीं है, जहां पर बीमार, जिन लोगों का ऑपरेशन हुआ है, उनकी लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हम अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, विभाग से हम ये अनुरोध करते हैं कि अगर आने वाले दिनों में कहीं पर भी ऐसा कार्य करना है, वो बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है, देश को, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए जरूरी है। पर अगर पहले सूचित किया जाए तो सभी लोग उसी तरीके से अपना इंतजाम करें। मैं आपको एक बात और जरूर कहना चाहूंगा, कल रात जब 10 बजे तक लाइट नहीं आई, तो बहुत सारे घरों में हमने देखा जो मोबाइल के टॉर्च के नीचे एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों में जाते दिखे। मैं अपने घर में भी इसी तरीके से चलता रहा जब तक हमारी लाइट आई तकरीबन 10 बजे रात को, जबकि 11 बजे वो ऑफ हो गई थी। तरक्की जरूरी है, पर अगर ये सुयोजित तरीके से हो तो हम सबके लिए फायदेमंद है, हम सबके लिए जरूरी भी है, लाभदायक भी है, और हम अपने उन विभागों का शुक्रिया अदा करते हैं जो समय समय पर उसको ठीक करते हैं, आपूर्ति करते हैं। पर हम सभी से अनुरोध करते हैं इस रेडियो वितस्ता के माध्यम से, इस आवाज के माध्यम से सभी अधिकारियों को ये कि अगर इस बड़े काम को करना है तो उस तरीके से किया जाए ताकि पहले सूचित किया जाए और उसके बाद बाकी समय अच्छे से गुजरे। ये एक बात हमारे मन में थी जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी, और आपकी बात हमारी बात है, और हम कोशिश करते हैं रेडियो वितस्ता के माध्यम से हम सभी लोगों तक जो भी कंसर्न्स होते हैं उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम एक बार फिर क्षमा याचना करते हैं, कल आप पूरे दिन हमारे प्रसारण नहीं सुन पाए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और हमारे प्रसारण आप तक पहुंचते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे इस विषय पर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। सुनते रहिए रेडियो वितस्ता के प्रसारण हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके जीवन का प्रवाह मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्धजनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विद अ स्टार, हम सफर जिंदगी का।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम चु बोजान रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता चु पन्न माज जेब पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेथ हमेश यवान। बचुस तुहुंद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज चुस बु तुहुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मंज अख नव डल हेथ आमुत। आज बोजनो तुह अशुर अफसान जन लिखमुत सान हिंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन। अत अफसानस नाव पोज अपुज। वलु बोजो ये अफसान पोज अपुज। अख लकुट अफसान अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: चश्मे एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: 90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कौन थी वो लड़की?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या। आई थी वो धमसे, आई थी वो धमसे, गई छम छम छम।

0: सामने वो देख रहे एक ट्रक आ रहा
1: मत बोल आ नहीं जा रहा
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल
1: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी सिंपल
0: देखो बेल बॉटम गालों पे डिंपल हल्का सा गाल

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: हम थे वो थी हम थे।

ठक धड़के, दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के, वाह वाह वाह, हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो।

0: आज मैं एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 13। कार्यक्रम का शीर्षक है जिद। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। रेट्रो हिट्स का एक और अंक लेकर आई हूं। जिद, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

यूं है सब कुछ मेरे पास, बस दवाई दिल नहीं। दूर वो मुझसे है पर मैं उससे नाराज नहीं। मालूम है अब भी मोहब्बत करता है वो मुझसे, वो थोड़ा सा जिद्दी है लेकिन बेवफा नहीं।

जख्म क्या होता है ये बताएंगे किसी रोज, कमाल की गजल तुमको सुनाएंगे किसी रोज। थी उनकी जिद कि मैं जाऊं उनको मनाने, मुझे ये वहम था कि वो बुलाएंगे किसी रोज़।

बादलों के दरमियाँ कुछ ऐसी साजिश हुई, मेरा मिट्टी का घर था वहीं बारिश हुई, फलक को आदत थी जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमको भी जिद थी वहाँ आशियाना बनाने की।

थाम लिया खुद को अपने दम पर, मंजिल मिलेगी इस पक्के इरादे पर, हवा चाहे कितनी भी तेज हो, राह बनाएंगे इस फलक पर।

हर एक गम को खुशी में बदल दिया हमने, जिद थी हमारी खुद को संभाल दिया हमने। हवाओं का रुख चाहे जिधर भी जाए, मुकद्दर को अपनी राह पर डाल दिया हमने।

तू अपनी जिद पे अड़ा है, मैं भी इरादे की पक्की हूँ। हर ठोकर ने सिखाया, मैं भी हौसले की पक्की हूँ। ये जो राहें बदलेगी, मैं फिर भी चलूंगा। हर मंजिल का दरवाजा मेरी जिद पर खुलेगा।

जिद पर हूँ अपनी मंजिल को पाने की, हर मुश्किल से टकराने की, ना हार मानूंगा ना रुकूंगा कभी, ये जिद है मुझे अपने ख्वाब सजाने की।

गिरते हैं संभलते हैं ये रीत पुरानी है, हर मुश्किल से लड़ना ही तो मेरी कहानी है। सपनों को सच करने की जिद लेकर चला हूँ, रुकना मेरा सफर में ये बात अनजानी है।

इसके साथ ही रेट्रो हिट्स का आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जो ठान लूं वो करके दिखाने की, दुनिया कहे नामुमकिन है जो उसे मुमकिन बनाने की। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 13। कार्यक्रम का शीर्षक था जिद। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

वो कौन था जो दे गया फरेब, दे गया जख्मों की बारिश, फिर जिंदगी को संभाल न सके। आज मेरे मौसम जर्द हो गए, शाखों से पत्ते टूट गए और दौरानी सफर छूट गए मेरे यार, रास्ते गुम हो गए। इसलिए शायद तुम हमारे ना हो सके, वक्त बेवक्त तुम याद आते रहे। मेरे अपनों की तरह तुम भी मेरी इबादत में शामिल रहे और मैं सजदों में तुम्ही से मुखातिब रहा, यूं ही

0: कोई गुजरता है हर पल मेरे पास से, मेरे करीब से। धुंधला धुंधला चेहरा दिखाई देता है और चलने की आहट सुनाई देती है। इन पैरों को छूने की हल्की जुम्बिश महसूस होती है। कोई तो है जो सुनता है मेरे दर्द को।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया, पलके झुकी और

ख्वाब थी पर रह गई अधूरी, हसरतों की मीनार दब गई सीनों में, अब पहले जैसे जज्बात कहां, पहले जैसी मुलाकातें कहां, पहले जैसा चांद भी तो अब कहां उगता है आकाश में। ना पहले जैसी तारों की बारात, उनकी टिमटिमाहट नजर आती है, और ना ही तुम्हारी जानिब से खुशबू मेरे पास से गुजरती है। अब रुक गए काफिले मोहब्बतों के, यूं ही तुम हमारी तन्हाई में याद आते रहे शायद।

आएगा, मेरा अतीत दोहराएगा, बीती बात याद दिलाएगा, मुझे खुद से मेरी पहचान कराएगा। मुद्दती हुई कोई ख्वाब में आया नहीं, शायद बरसों से मैं सोया नहीं, इंतजार में बीत गए साल हर साल। ख्वाब बनकर कोई आएगा, मेरा हाथ जरूर थामेगा, मुझे ले जाएगा, अपने साथ बिठाएगा अपने पास।

आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? फिल्मी गीतों का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे इजाजत। नमस्ते।

यह श्रोता आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। अम्बाला छावनी से हम करते हैं प्रसारण, और अम्बाला के लिए इस सामुदायिक रेडियो को स्वीकृत किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। कोशिश करता हूं हर दिन कुछ नया करूं, कुछ नई बात करूं आपसे, ताकि आपके दिलों तक हम पहुंचे और हम बात वही करें जो रखे आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। आज के लिए बस इतना ही है, और हमारे स्टूडियो में इस समय घड़ी में समय है 9:01:21। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, और रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर सुरों और सूचनाओं का जो सफर आज सुबह शुरू हुआ था वो अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला है। आज का दिन आप सबके साथ बहुत ही खूबसूरत रहा। श्रोताओं, आज 27 जून है। आज भारत सहित पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय MSEM दिवस, यानी इंटरनेशनल MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डे, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन क्यों है बेहद खास? किसी भी देश की तरक्की की नींव बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं, बल्कि वे छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में छोटे और मध्यम उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना, उन्हें सलाम करना और आगे बढ़ावा देना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है MSME, हमारे जो लघु उद्योग और सूक्ष्म और मध्यम उद्यम हमारे देश के अंदर है। ये हम भारत के संदर्भ में बात करें तो MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, कृषि क्षेत्र के बाद यह क्षेत्र देश में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा करता है। करोड़ों परिवारों को चूल्हा इन्हीं उद्यमों से चलता है, और इन्हीं की बदौलत इनका चूल्हा जलता है। देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद और कुल निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स में इस क्षेत्र का हिस्सा बेहद मजबूत है। अगला, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े संकल्पों को सच करने के लिए हमारे स्थानीय कारीगर, छोटे व्यवसायी और उद्यमी सबसे आगे खड़े हैं। इस को ध्यान रख के एक छोटा सा संदेश आपके लिए देना चाहूंगा। आज का दिन उन सभी उद्यमों के हौसले को सलाम करता है जिन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत करके बड़े ख्वाब देखे और देश को आगे बढ़ाया। रेडियो वितस्ता की ओर से सभी छोटे बड़े उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह था आज का विषय, और श्रोताओं आज का सफर बहुत खूबसूरत रहा। अब वक्त है रेडियो वितस्ता के रेडियो तरंगों को विश्राम देने का और आप सबसे विदा लेने का। लेकिन जैसा कि हमारा दस्तूर है, आज की शाम को शब्दों के इस खूबसूरत तोहफे के साथ अलविदा कहते हैं। हर दिन के लिए आपके लिए लाता हूं कुछ पंक्तियां, और आज की पंक्तियां यूं है। तिरंगों के सफर में यादों का कारवां बुनता है, तिरंगों के सफर में यादों का कारवां बुनता है, हर दिल यहां आकर अपनी ही धड़कन सुनाता है। विदा ले रहे हैं आज इस वादे के साथ दोस्तों, विदा ले रहे हैं आज इस वादे के साथ दोस्तों कि रेडियो वितस्ता कल फिर आपकी महफिल चुनता है, कि रेडियो वितस्ता कल फिर आपकी महफिल चुनता है। जी हां दोस्तों, और जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण जल्दी से। कल 28 जून 2026 रविवार को हमारी सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर। वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत, लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 7:05 पर हरियाणवी सेगमेंट के अंतर्गत सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ गांव चले एपिसोड 13। हम आपको लेके चलेंगे गांव अकबरपुर, पेश करेंगे भारत सोपोरी, और 8:00 तुम्हें याद हो कि ना याद हो एपिसोड 9। 8:30
किन्नी के साथ रेडियो पॉडकास्ट कल का पॉडकास्ट एपिसोड 6 है, रिश्ते कमजोर कर सकता है मजाक उड़ाना। 9:30 बजे सुनहरे पल एपिसोड 12 और 10:20 पर होगा कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 2। कल की फिल्म हमने चुनी है कटी पतंग, पेश करेंगे दीपक कश्यप। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 4, पेश करेंगे आज ये किन्नी और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है खुशबू। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आप अपनी अनुभव अपने एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता को कुछ कहना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप अपने बारे में भी हमें इसी नंबर पर जरूर लिखें। हम आपको आमंत्रण देंगे स्टूडियो में और हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। कल सुबह फिर होगी मुलाकात नई ऊर्जा, नई धुनों और नई उम्मीदों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। तो कल सुबह 5:58 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।